0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान्य हर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: विश्रामपछि खोज खबरमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी खबर नेपाली कंग्रेसको 15 महाधिवेशन अन्तर्गत वडा नगर प्रदेश र क्षेत्रमा अधिवेशन भइरहेका छन् अधिवेशन अन्तर्गत बुधबार टीकापुरमा भएको अधिवेशनले नगर सभापतिको नगर कार्य समितिको सभापतिमा जनकराज तिमिलसेनालाई चयन गरेको छ यस्तै नगर कार्य समितिको उपसभापति महिलामा मालती देवी साउद उपसभापतिमा लालकेश उपाध्याय र सचिवमा दीपकराज खनाल र सहसचिवमा मिठु बहादुर बोहरालाई चयन गरेको छ यसैबीच जानकी गाउँपालिकाको सभापतिमा श्याम चौधरी जोशीपुर गाउँपालिकामा रामप्रसाद चौधरी र भजनी नगरपालिकाको सभापतिमा अनिता चौधरी चयन हुनुभएको छ कंग्रेसको कैलाली क्षेत्र नम्बर एकको प्रदेश र क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 10 गते हुने जानकारी गराएको छ खोज खबरमा अब पालो जनआवासको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार सुदूरपश्चिममा पनि आजदेखि 11 गतेसम्म अति भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ आजको जनआवाजमा हामीले तटीय क्षेत्रका केही नागरिकलाई कसरी पूर्व तयारी गरिरहनु भएको छ भनी सोधेका छौं
4: म नाम राजकुमार चौधरी हो जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 करैला हाम्रो तयारी सर्ती आती साथी और जोड़ने तो राशन पानी यहाँ वहाँ भवन वन सब तैयार करती आती और सामान खिलो भगैती आती लगल आती हमारे साइरन बजा के थी और मेकिंग करके थी सूचना देती आती समुदाय है सचेत करती आती और किराकी द्वारा जानकारी करती आती
5: नगर पहले बार आयल तो बैठक करे मैंने सचेत हूँ कैसे तब जाके सबको जगह ढेला करा के बस खादा वैसी पूर्व तैयारी कर ले कैसे बतो और जाके बारी पीड़ित के उतर के हाथ जले मैकिंग करके और जाके बैठक करके सबको जगह अनुसार उत्सव उत्सव जय हो कैसे उत्साह करे
4: एक बार विश्वकर्मा जानकी पास की हमें तो अब कभी चौकीदार द्वारा यहाँ हिमल द्वारा गाँव में सचेतना कार्यक्रम अब जैसे गाड़ी आँद सचेतन होगा आवश्यक कागजात मुख्य कागजात सुरक्षित राख्हला अभी खोला नदी नजान होगा दाउरा ताउरा खोला में बगे नटिच्न होगा बग्ने संभावना हो खोला अभी मौका नाने क्रम में खोला नदी नजान होगा भन्ने सूचना प्रदर्शन जाहिर करे
3: टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित शस्त्र प्रहरी अगाडि हिजो साँझ दुईवटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् दुर्घटनामा परे सुरेन्द्र शाह गम्भीर घाइते भएको र उनको टीकापुर अस्पतालमा उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगंज रेफर गरिएको प्रहरले बताएको छ अर्का घाइतेको भने टीकापुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरले जनाएको छ यस्तै समाचारसँगै खोज खबर सकियो अन्त्यमा जाँदा जाँदै खबरका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक आजदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिममा पनि भारी वर्षाको पूर्वानुमान तरासका बीच कर्णाली नदी किनारमा जैविक तटबन्ध गरिँदै अविरल वर्षाको सम्भावनापछि टीकापुरका विद्यालयमा आज विदा जानकीमा पनि अनन्त चतुर्दशी व्रतको विदा वाणिज्य कार्यालयद्वारा टीकापुर बजारको अनुगमन मनपरी मूल्य लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक र शक्तिदेवी आधारभूत विद्यालय टीकापुरको सामाजिक परिचान अहिलेलाई खोज खबर यति नै प्राविधिक मित्र छविलाल चौधरीलाई धन्यवाद दिँदै अहिलेको खोज खबरबाट म ईश्वर साउद विदा हुन्छु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्दै गर्नुहोला

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
2: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: मुका पिएर कबु पेन्सिल कबु झनै फटाका आजी का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कई कबु पेन्सिल हेरा कई कबु झोले फटा कई बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं छिटो
1: अरे कहाँ से नानम
0: तो कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रहती ना झोला फाटल हुई कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुनी
1: लिया लिया मैं अब भी जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उक्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रोमा फेस सुन्ति हालबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से आज 11 गते समसुर पश्चिम माफे भारी वर्षा के पूर्वानुमान। त्रास के बीच में कर्णाली लदिया के किनार में जैविक तटबंध निर्माण। अविरल वर्षा के संभावना पासे टीकापुर के विद्यालय में आज विदा। जानकी माफे अनंत चतुर्दशी व्रत के विदा। वाणिज्य कार्यालय से टीकापुर बाजार के अनुगमन। मनपरी मूल्य समेत लेना करलक तथ्यांक सार्वजनिक। ओ शक्ति देवी आधारभूत विद्यालय टीकापुर के सामाजिक परीक्षण। आप पूरा खबर। हाल कोसी मधेश बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के अधिकांश स्थान में मौसम बदलती बा। कोसी मधेश बागमती गंडकी कर्णाली लुम्बिनी प्रदेश के ढेर स्थान में कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का से लेके मध्यम खाल के पानी पड़ती बा। मौसम विज्ञान विभाग से आज से लेके 11 गते सम सुदूरपश्चिम में फिर भारी पानी पर्ना पूर्वानुमान करल पाछे। बाढ़ के खतरा हो सकना कर्णाली किनार के बस्ती में पूर्व तैयारी करती बा। कर्णाली लदिया में समेत बाढ़ के सतह बढ़लक में प्रभावित हो सकना टीकापुर नगर पालिका के 7 और 8 में फे सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति वाड़ा समिति सक्रिय हुए। सशस्त्र प्रहरी के सहयोग करती बा। विफेक दिन के सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा गुलमा खकरौला वार्ड नंबर 7 और 8 के स्थानीय से वार्ड नंबर 8 के पुडाल टोल में 2 ठाव में समेत बोरा में माटी भर के तटबंध करल बटागिलवा। लदिया में बाढ़ में समेत बरलक ओर से शक्ति कर्णाली सामुदायिक बनुआ क्षेत्र में फिर बाढ़ पैठना अनुमान करल। यहां के 400 जत्रा स्थानीय परिचालित हुई तटबंध करगिल वार्ड नंबर 8 के वाराध्यक्ष दीर्घबहादुर थकुल्ला जानकारी करे बाटे। कर्णाली लदिया में पानी के सतह बढ़ल से मोहना और काढ़ा लदिया में समेत थुनजैले ओर से डुबान में पर्ना वार्ड नंबर 7 के बैदी में समुदाय आवश्यक परल बेला उच्च घर में समेत सर्ना तैयारी करगिल सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति के सचिव भोजराज डुंगाना बटुले बाटे। उसके वार्ड नंबर 8 के स्थानीय धनसिंह साउट से कर्णाली लदिया के बार शक्ति कर्णाली बनुआ क्षेत्र में पैठना खतरा रलक हो। अब फिर समेत ई बाहर समेत घेरा में थपगिल तटबंध से फिर पानी नहीं रोकल पाछे ढेर क्षति होने संभावना समेत हुई बताया बा। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 5-7 के वर्ष में समेत पानी झरना वार्ड नंबर 8 समेत में पानी झरलक ओर से कर्णाली से बार पैठना झन खतरा बढ़ती रहत। इस क्षेत्र में 2078 साल में फे भारी भारी बार अलग को धनजन के क्षति करलक हो। ई वर्षा फे समेत पूर्वानुमान करगिल अनुसार पानी पर्के ढेर नुकसान हुई सकना रलक ओर से मानवीय क्षति हुई नहीं देना करके तैयारी हुई लक 59 वर्षीय टीकाराम चौधरी जानकारी दिले बाटे। सशस्त्र प्रहरी के नायक उपरीक्षक देवराज विष्ट से बाढ़ से प्रभावित हुई सेकना समुदाय सचेत रहला कौन फिर समस्या पर्ल से संपर्क करना कहल बताया। स्थानीय तटबंध बना के समेत स्थल में टीकापुर नगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ममता वास्तोला से फिर आवश्यकता समेत अवलोकन करके आवश्यकता अनुसार काम करना। उसको वास्तोला है प्रहरी उपरीक्षक विस्तार से डगरा में बाढ़ से समेत बहना रलक ओर से ढेर रहलक बेला भारत में समेत नेपाल प्रवेश कर डगरा में 2 किलोमीटर जत्रा दोरी बांध के धरना हो। वह बीच में सहायता के आवट जावट करना तैयारी समेत होते रहल बताया। टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 5, 6, 7 और 8 में कर्णाली पथरैया काड़ा और मोहना लदिया के बाढ़ से प्रभावित हुई सकना क्षेत्र हो। यहां के बस्ती में उच्च घर बनायल बा कल से उच्च स्थान पहचान करके बार ऐना निश्चित फुलपासे तैयारी के साथ यहाँ के घर में समेत बैठना तैयारी करगिल बतागिल बा कर्णाली लड्डिया में बार चिखा पानी गेज में सूचित फुलपासे तरक क्षेत्र के समुदाय के मनैन है सायरन बजा के सूचना देना हो तमाम समिति सक्रिय हुईना करके पूर्व सूचना प्रणाली बनायलो जोखिम पूर्वानुमान करके नगर के विद्यालय के विदा करगिल टीकापुर नगर पालिका के विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी बटवेली बाटे अनंत चतुर्दशी व्रत के उपलक्ष्य में जानकी गांव पालिका फे आज स्थानीय विदा देहलवा जानकी गांव पालिका थारू समुदाय के समेत अनंत चतुर्दशी व्रत के अवसर में एक दिन स्थानीय विदा देना निर्णय कर टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर पांच के कर्णाली तटीय क्षेत्र में रलक तीन थो सामुदायिक बनुआ में वृक्षारोपण करगिल बा प्राक्टिकल एक्शन बी ग्रुप के सहयोग तथा टीकापुर नगरपालिका के समन्वय में टीकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर पांच के समेत टीकापुर के नर्सरी भैरवनाथ वन भगरैया वन संरक्षण समिति में 2500 बिरूवा वृक्षारोपण करल जनागिल बा लडियक तटीय क्षेत्र में रलक ई बनुआ में बांस सगुन उस्तका सीटल चीनी तेज पत्ता लगायत के बिरूवा समेत लगागेल बा सामुदायिक बनुआ उपभोक्ता के सहयोग में वृक्षारोपण करगेल खोस्त करके वार्ड नम्बर आठ के 200 त्रिगाट सहित 300 प्लांट के समेत फलफूल उस्तका बटनपुर सड़क में लगागेल बा कलसे टोल विकास संस्था के सक्रियता में वृक्षारोपण करगेल बा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण के लग लबिक किनार में समेत नियंत्रण मा सहयोग पुगैना उसमित सामुदायिक वनवा से आमदानी बढ़ना वन समिति के माग अनुसार बहु उपयोगी बिरूवा के वितरण करगिल बी ग्रुप से जनायल बा खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से सुनतीर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: टीकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समिति को संभावित भारी वर्षा र बाढ़ी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढ़ी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। टीकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढ़ी डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ। तसर्थ धनजनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ। मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू नदी किनारमा नजाऊ बाढ़ीको समयमा माछा मार्न काठ दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाऊ महत्वपूर्ण कागज तथा सामान सुरक्षित राखौ आफ्नो नागरिकता जग्गाधनी पूर्जा शैक्षिक प्रमाण पत्र औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौ बाली नाली भित्राउन तार नगरौ धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारौं होचो स्थानमा व्यवसाय भएका व्यवसायीले सुरक्षित स्थानमा सामानको व्यवस्थापन गरौं विशेष वर्गको ख्याल राखौं बाढ़ी वा डुबानको जोखिम बढेमा घरका वृद्ध वृद्धा बालबालिका गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा सामुदायिक आश्रय स्थलमा लैजाने तयारी गरौं आवश्यक जानकारी तथा सहयोगका लागि वडा अध्यक्ष नगर प्रहरी विपद सम्पर्क व्यक्ति तथा सुरक्षा निकाय र सरकारवालासँग समन्वय गरौं टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली
2: यो खाने मन त कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
3: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि फेरि आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
2: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो हुन्छ
3: अनि सुधार घिरामा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरदम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
2: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
6: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
5: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से आशे लेके 11 गते सम नेपाल बा ढेर भारी वर्षा से लेके ढेर वर्षा के संभावना रलक कहती अलर्ट समेत जारी करल बा। वह सूचना के आधार में सुदूरपश्चिम प्रदेश में फे उच्च सतर्कता अपनाइना मौसम कार्यालय स्थानीय तह लगायत के तमाम संघ संस्था से आग्रह करल बावी। महाकाली बेसिन फील्ड कार्यालय के प्रमुख इंजीनियर संजय कुमार शाह से मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जारी कर लक सूचना अनुसार सुर पश्चिम के 3 जिला हाई अलर्ट में समेत रहल बटागिल बा कल से दारचुला बाजुरा और बझांग बा हाई अलर्ट तरगिल बा। ई जिला के सकु प्रदेश अन्य सकु जिला में फे समेत सतर्कता रहना आवश्यक रहल समेत बटागिल बा। वह अनुसार कार्यालय से तमाम माध्यम से सुर पश्चिम के समेत जनता होकरन पूर्व सूचना देना कायम करती रहल बताइल बा। वहां प्रदेश में समेत बाढ़ के पूर्व सूचना देना 36 समेत रडार लेवल सेंसर समेत जरान करल बटवागिल बा। कल से जी से पानी के बहाव बढ़ल बा। वही घटना के बारे में हरेक 10-10 मिनट में तथ्यांक देती रहल बा। जी जनता के समेत सहजिले मोबाइल में समेत हेर सकना वहां से जनाइल बा। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय धनगढ़ी से कालिक टीकापुर बाजार अनुगमन करल बा। अनुगमन के क्रम में टीकापुर के कपड़ा तथा फैंसी पसल हुकरन के अनुगमन करल बटागिल बा। अनुगमन करबे स्थानीय व्यापारी हुकरन के मनपरी मूल्य लेना करल भेटागिल बा। बिक्री के लक धरगेलक वस्तु के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य धरे पर्ना नियम रहलसे फेन अधिकांश वस्तु के मूल्य भेटाइल नै हुए। कैयौं व्यापारी हुकुरा कम्पनी के अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य नै रलक समेत बटाइल बाटै कलेसे कतिपय हुकुरा यही समस्या के रूप में लेहल बाटै। अधिकांश व्यापारी हुकुरा कपड़ा के मूल्य के रूप में एबीसीडी समेत लिखकर ठगती रहल पागिल बा। कैयौं व्यापारी हुकुरा अधिकतम खुद्रा में बिक्री मूल्य समेत धरके अलग फैंसी पसल के सामान में फे उसे ढेर मूल्य में बिक्री समेत करल पागिल बा। अनुगमन करगिलक अधिकांश पसल में बिल के प्रयोग नहीं हुलो। प्रयोग करलक पसल में फे समय दिन में 1-2 ठोकेल बिल काटल भेटागिल बा। टीकापुर के सबसे भारी व्यवसाय में फे न्यू पॉपुलर फैंसी में समेत अनुगमन करबेर दिन के पसल में समेत बिले नै रलक बटाइल बाटे। अधिकांश सामान में कोड समेत धरल पसल में फे खरीद बिल अनुसार नै सामान देखेन कलसे बिल मिलेना समेत पठायल संचालक सृजना पौडेल बटोले बाटन। वाणिज्य कार्यालय के प्रमुख तारामान रावल से उपभोक्ता हुकरन के सुरक्षा के लग बजार स्वच्छता कायम करना अनुगमन करगिलो सरकार से मूल्य पारदर्शिता करना नीति अनुसार हरेक वस्तु के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य नई हुई पर्ना बतैटल बा। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के सचिव प्रकाश शाह से टीकापुर के व्यवसाय में गंभीर समेत निहिलक बिक्री करबेर उपभोक्ता हुकरा था पाई नगरी मूल्य नई धरलक पागिलो सच्याई पर्ना बटोले बाटे। उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपाल के टीकापुर के अध्यक्ष शेरबहादुर बिस्ता से टीकापुर में पहिल पटक कपड़ा पसल के अनुगमन करलक ओर से ढेर समस्या समेत रहस्य था हुईलक ओ समेत व्यवसाय हुकरन के मूल्य नई धरके कोड धरके उपभोक्ता हुकरन के सुसूचित हुईना अधिकार हनन कर लक्ष्मण पागिल बटेले बाटे। वाणिज्य कार्यालय के नेतृत्व में खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण कार्यालय धनगढ़ी इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर टीकापुर नगरपालिका उपभोक्ता कर्मी हुकरन के सहभागिता में टीकापुर के बजार में 8 पसल के अनुगमन कर गिल हो। शक्तिदेवी आधारभूत विद्यालय टीकापुर एक शक्तिनगर के सामाजिक परीक्षण करगिल बा विफेक दिन के हुई भेला से सामाजिक परीक्षण करगिले खो सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करती विद्यालय के प्रेम चौधरी शिक्षक प्रेम चौधरी विद्यालय में 140 जाने विद्यार्थी रलकमा जिम्ना छात्र 71 छात्रा 69 जने रहल जनाइल बा उसक शैक्षिक सत्र 2082 में 215 दिन विद्यालय खुलल 212 दिन पढ़ाई हुलो विद्यालय के सिकाई उपलब्धि 67% रलक जानकारी दिले बाटे बाल विकास में उत्तीर्ण दर 45% कक्षा 1 से लेके 5 सम्म उत्तीर्ण दर 82% रहल फे प्रतिवेदन में लिख गिलवा विद्यालय में कक्षा दोहराइन दर 18% छोड़न तथा स्थानांतर दर 20% रलक फे कार्यक्रम में जानकारी करा गिलवा विद्यालय में थाई दरबंदी रलक दुई जाने बाल विकास शिक्षक 3 जाने रहाब शिक्षक नगर अनुदान शिक्षक कार्यालय सहयोगी और पाले 1-1 जाने करके 9 जाने शिक्षक कर्मचारी रलक फे प्रतिवेदन में उल्लेख करगिलवा कार्यक्रम में आर्थिक वर्ष 82-83 के 40,51,223 रूपया के आईबीआई फे सार्वजनिक करल रह खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
7: अत्यंत जरूरी सूचना मिति 2083 साल असोज 9 गते से 11 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्र मन बाढ़ी के जोखिम रहल हुईलक वहर से सबको गाउँपालिका वासी कन्ह हार्दिक अर्जी करती आपन खाद्यान्न सामग्री महत्वपूर्ण कागजात नगद तथा जिन्सी सामान लत्ता कपड़ा दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान सुरक्षित ठाव मन धरबी घर व आन्दर पान्दर के अवस्था जोखिमपूर्ण हुई सेकना हुईलक वहर से आवश्यक सतर्कता अपना कन सुरक्षित ठाव मन बैठक लागी अनुरोध करती संभावित बाढ़ी के जोखिम होना मद्देनजर करती समय में सुरक्षित रही सतर्क रही वो एक और जान होना सहयोग करी जानकी गाउँपालिका गाँव कार्यपालिका के कार्यालय दुर्गौली कैलाली
8: के तपाई चाया डन्डीफोर दाद एलर्जी कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ
0: अब टीकापुरमा रहेको मनीष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू
8: यही असोज 10 गते शनिबारका दिन
0: मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
8: मनीष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने इक्जेमा सोरियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट छाती मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ
9: डाक्टर आउने दिन यही असोज 10 गते शनिबार
0: स्थान मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली सम्पर्क फोन नम्बर 9860071024 र 9846774417 विश्राम पाछे फेरसे स्वागत बा नेपाली कांग्रेसकै 15 महाधिवेशन अन्तर्गत वाडा नगर प्रदेश क्षेत्र के अधिवेशन हुइति रहल बा अधिवेशनमा समेत अन्तर्गत बुधबार टीकापुरमा हुइलक अधिवेशन से नगर कार्य समिति के सभापतिमा झनक राज तिमेलसेना हे चयन करगिल बा नगर कार्य समिति के उपसभापतिमा महिलामा समेत मालती देवी साउत उपसभापतिमा लालकेश उपाध्याय सचिवमा दीपक राज खनाल सहसचिवमा मिथु बहादुर बोहरा चयन हुइल बाटै उसकर्के कार्य समिति सदस्यमा वार्ड नम्बर 1 से महिलामा टीका देवी स्वार खुलामा विश्वमान स्वार उसके वडा नम्बर 2 महिलामा पार्वती धामी खुलामा पवन थारू वडा नम्बर 3 महिलामा राधा थारू खुलामा मस्ती प्रसाद जैसी वडा नम्बर 4 महिलामा रेणु कुमारी चौधरी खुलामा विनोद कुमार भुजेल चैनहुलबाट उस्ताके वार्ड नम्बर पाँचमा महिलामा कञ्चन कुमारी बिखा ओखुलामा कटक रावल वार्ड नम्बर छमा महिलामा योगेश्वरी खनाल खुल्लामा निरफबहादुर शाह वार्ड नम्बर सात मन्से महिलामा जानकी ठकुला ओखुल्लामा फुलराम चौधरी वार्ड नम्बर आठ मन्से महिलामा निर्मला साउदो खुल्लामा टीकाराम चौधरी वार्ड नम्बर नौमा महिलामा जयश्वरी थापा खुल्लामा बिडुलाल चौधरी चयन हुनबाटै नगर कार्य समितिके आरक्षण ओरके युवामा महिलामा सञ्जिता ढुङ्गाना खुल्लामा जनक चौधरी दलितमा महिलामा समेत तुलसी सुनार ओखुलामा रमेश विकास चयन हुनबाटै महाधिवेशनमा जिल्ला प्रतिनिधि केमा लक्ष्मेत महिलामा चाँदनी कुमारी जोशी खनालो खुल्लामा सुरत बहादुर रावल हि सिफारिश करलबा यी आघे वाडा अधिवेशन हुसेकल बा कलसे यह बीचमा जानकी गाउँपालिकाकै सभापतिमा श्याम चौधरी जोशीपुर गाउँपालिकामा राज प्रसाद चौधरी भजनी नगरपालिकाकै सभापतिमा अनिता चौधरी चयन हुनबाटै कंग्रेसकै कैलाली क्षेत्र नम्बर एक के प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशन असोज दश गते हुन जनागिल बा यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से आज से 11 गते समुद्र पश्चिम में भारी वर्षा के पूर्वानुमान त्रास के बीच में कर्णाली नदी किनार में जैविक तटबंध करती अविरल वर्षा के संभावना पाछे टीकापुर के विद्यालय में आज विदा जानकी माफे अनंत चतुर्दशी व्रत के विदा वाणिज्य कार्यालय से टीकापुर बजार के अनुगमन मनपरी मूल्य लेना करल तथ्यांक सार्वजनिक शक्ति देवी आधारभूत विद्यालय टीकापुर के सामाजिक परीक्षण लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुन सकती अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी बिदा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम राम, राम।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे गोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उने न पट्टा नि पैना त
1: अदि गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नि सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे के कत्रा सुगर बना कन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846239261
2: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
3: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
4: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
2: डेलिभरीका लागि
4: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
2: टिकापुर कैलाली
5: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870106772
6: स्वास्थ्यका लागि पानी
7: लक्ष्मी आभूषण भण्डारमा छड्के तिलरी माइली तिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेन्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुन चाँदीका गरगहनाहरू सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला लक्ष्मी आभूषण भण्डार सिद्धार्थ चौक टिकापुर कैलाली संचालक प्रकाश भण्डारी सम्पर्क नम्बर 9848531595

राम राम समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज खोल के बैठल सको रेडियो प्रेमी मैगर संग्रकन में स्वागत के संगे अभिवादन करना चाह मई चांद मोरी गोल अपने के संगे पुगैती रत्न जी अनलाइन में www.tikapurfm.org टीकापुर एफएम .org टीकापुर एफएम एप्स मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर अपने सुनती कार्यक्रम गोछियाली हवाई 101 मेगा हर्ज के तरंग में अपने के रेडियो सेट समय मोबाइल सेट समय हम्रवाती गोचाली कार्यक्रम हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म अपने के संगे होने करती आज से संग संगे हुई या पुगलाती आज कुछ एकचोटी कार्यक्रम एकचोटी लेट संचालन हुई थी भाई माफ कर विसंग अपने उपकरण के कार्यक्रम हो गई गोचाली भावना रुचि सुने न कार्यक्रम गोचाली ओ रेडियो मार्फत चिंजान हुई सकना अपने उपकरण के भावनात्मक संबंध जोड़े सकना कार्यक्रम गोचाली तब मारे अपन रानी बानी बटाक पर्ने रहता अपने हो के अपन रानी बानी बटाके लौरा लौने चाहे कोई संग अपन अपन अपन मन पड़ल संग संगे चिंजान जो हुई सकती है मैं जानकारी करना चाहम वो संग अब के समय में का करती आती जे एकदम शीतर शीतर शीतर मौसम भवे निम्ति घुमती आती फुर्सद के समय में बाटी काम धंधा में लागल बाटी की मजई हुई कुशल मंगल आरा में हुई कना हमन लागत हो एकचोटी समय निकाल के होने से फिर साथ देख चाहे बिल्कुल ही ना भले भी ओ संग्रह के आज अनत्तर पर्व अनत्तर पर्व के ढेर ढेर ढेर शुभकामना फिर अपने हुकन देना चाहम अनत्तर पर्व के शुभकामना अपने हुकन अपन नापन संघरिया हुकन फिर देना इच्छुक बाती देहनास मन लागत आवे से फिर अपने हुकरे आई से थी मैं जानकारी करना चाहूँ अपने हुकन के संगे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत करी हमरे एक ठो गीत से

हजुर कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने उखरन अपने उखरन भर्खरै रेडियो खोलके बैठल बाटी कले से सुन्तीभाटी समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्तीभाटी अनलाइन में www.tikapureFM.org टीकापुर एफएम एप्स मार्फत हाम्रो पात्र मार्फत संसार के कोई भी कोनो से अपने उखरे सकुजाने संगसंगी या वह ठाउँ से अपन सहभागी फेर जाने से भी अपने मई घर अर्जी करना चाहम कार्यक्रम गोचाली हो हरेक हप्ता के शुक्रवार के दिन सवा दस से करीब करीब 11 बजेसम्म हम संगे हुई न करथे वाचक संगसंगे बाटी साथ देतिया तै रत्नजी मई चाँद के पार साथ दिन जो अपने उखरन के पाला बाबई अपन भावना रुचि सुनै न कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत जान हुई सकने कार्यक्रम गोचाली तमारे अपने उपे अपन सहभागी फिर जनाई सकती वो आज विशेष अनोत्तर पर्व हुए कारण से अनोत्तर पर्व के ढेर ढेर ढेर अपने अपन शुभकामना देना चाहब अपने अपन के सोचल मन के इच्छा चाहना पूरा हुए अपने उपे सुस्वास्थ्य दीर्घायु के कामना अपने अपन के करना चाहब वो अपन नाटवर संग अनोत्तर पर्व के शुभकामना देना जो अपने अपन मन लागत कल से फिर अपने उपे एकदम ना हिचकिचाके संकोच न मान के जहां उपस्थित हो देवी का अपने उपन मई घर अर्जी करना चाहम अपने उपन के संगे रिमझिम रिमझिम रिमझिम पानी पड़ती बावे कोनो ठामे दत के पड़ती हुई कोनो ठामे कम पड़ती हुई मानी शीतर शीतर शीतर मौसम भाव्य के समय में अपने उपरे नेंगती घूमती हुई फुर्सत के समय में हुई भी काम धंधा में लागल हुई भी या अनतर पर्व के अपने उपरे तैयारी में लागल हुई भी कहना हमन लागत और एक छुट्टी समय निकाल के होले से फिर साथ देख चाही जो ना भूलेगी ये मई का जानकारी अर्जी करना चाहम संग रखे लदिया के आसपास लदिया के किनारे बैठल गांव ठाउं के संघर एक चुट्टी चलाखों के बैठ देवी मई का जानकारी करना चाहम बरवार ढेर पानी पड़ना पावे बहिया आई सकना कना जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान करगी लगवा तब मारे अपने होके एक चुट्टी चलाखों के बैठ देवी छोट लड़का पड़का बुढ़ाए लस्ते के गरुजू हिल मेधारू संघर के चाहे अपने होते एकदम सतर्क अपना देवी छोट बच्चाओं का अपने होते कुलवा के आंजर पांजर अकेली जो ना छोड़ देवी इमय का जानकारी करना चाहम अपने उनके संगे ओ खैन लदिया के आसपास बैठल संघर के खैना के जो हो जाके अपन महत्वपूर्ण कागजात जो अपने होते मदर ठाव में सुरक्षित ठाव में जो अपने होके धरबी एक चोटी चलाक होके बैठ देवी कना अपने मई कर जानकारी करना चाहम लाइन खुला पावे 0915-161-255 के दागर खुला पावे अठे पर हमने फिर से एक गीत जोड़ी गीत के बाद हमने फिर से लाइन खुला पावे

0: सुनाइमाई बिलाइरलै।
1: हजुर, कार्यक्रममा फेरसे स्वागत गर्न चाहब अपने हुक्रहन लाइन खुल्ला बाबी 91.5 केदागर खुल्ला बाबी यी मैगर जानकारी गर्न चाहब अपने हुक्रहन के सँगै लाइन में भी कले से पूरा बार बटवा जा देवी मिस कल चाहिँ ना मार देवी संघर्य बनाई भी कले से संघर्य के संबंध है ना टूटा देवी का ना अपने हुक्रहन मैगर जानकारी करना चाहब कोई संघर्य लाइन में आते कहां से कम संघर्य टेम बोलकारी वहां है। हजुर राम राम। हजुर राम राम। हजुर राम राम। कोई संघर्य लाइन में रहे मने खोई वहां के बोल नहीं सुन मिलल अपने विकल्प से पूरा बात रोके जा देवी मई का जानकारी करना चाहम सुन 91.5 के दागर खुल्ला बाबी भावना रुचि सुनैना कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चिंजान हुई सकना कार्यक्रम गोचाली अपने उपकरण के रानी बानी मेल खाना संघरकन के संगे चिंजान हुई लग जोई अपने उपकरण के लग्न है कार्यक्रम गोचाली तब मारे अपने अपन सहभागी जनाए से ठिकाना अपने उपकरण अर्जी और जानकारी फेकना चाहम अपने उपकरण के संगे शीतल मौसम भाव हुई नेंगती घूमती हुई भी फुर्सत के समय में हुई भी अनतर पर्व के ढेर शुभकामना सहित अनतर पर्व की तैयारी में अपने हुए जो लागल हुई भी करना अपने मईगर जानकारी और जी फे करना चाह हम शुभकामना दें शक्ति कोई संग्रह लाइन में आते हैं। हजुर राम राम। हजुर राम राम। वहां के बोल फिर सुनना है मिलल खाई वहां के फोन के गड़बड़ी हो या हमार यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई हो बुझे नहीं सकिल बिल्कुल टेक्नीशियन संघर्य लागल आते अपने हुकन के बोल जो अपने हुकन के बोल मोरिक छप्पू गायक लग वहां कोशिश कर दिया थे। लाइन खुला भाई 91.5 के दागर खुला भाई भावना रुचि सुनैना कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चिन्जान हुई सेक्ना कार्यक्रम गोचाली तब मारे अपने होकर आई से ठिकाना अपने होकर मई का जानकारी करना चाहम लाइन खुला भाई 91.5 के डागर खुला भाई शीतल मौसम के संग संगे अपने होकर एकदम चटकार झटकार बिंदास पारा में हुई गाना हमन लाठ खैर वहां के बोल फिर सुनाई सुन मिल अपने ग्रेवी कर ले बिल्कुल फोन में केंद्रित होके बार बार जो प्रयास कर भी मजा नेटवर्क को हिल ठाव से साथ देना जो प्रयास कर भी इमाई का जानकारी करना चाहम लाइन खुला बाबी अठे पर हमें एक गीत जोड़ी गीत के पास हमें फिर से वे बाटी लाइन खुला बाबी 91.5 के दागर खुला बाबी।

0: हजुर कार्यक्रममा फेरि चाहिँ स्वागत गर्न चाहब अपने उपकरण बिल्कुलै लाइन खुल्ला बाबु कोही सँगै लाइनमा आदै गर्न संकेत मिलाल बाबु कहाँ सकाउन सँगै रे बोलकारी उहाँ है हजुर राम राम हजुर राम राम
1: हेलो
0: हजुर राम राम
1: हेलो
0: हजुर राम राम
1: हेलो
0: हमार बोल रहे सुन मिल आपने है वहाँ खैर हमार बोल वहाँ नहीं सुन नहीं की का जैसे लाल वहाँ के बोल रहा हम एकदम फटकार से सुन थी बिल्कुल ही लाइन खुला भाई सुन 91.5 161.5 के बगर खुला भा हुई बिल्कुल ही लाइन में भी कले से अपने एकदम मिठास गप अपने होकरन के संगे हुई ये जानकारी करना चाहम अपने होकरन के संगे भावना रुचि सुनेना कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चीन जान हुई सीखना कार्यक्रम गोचाली अपने होकरन के लग्न है कार्यक्रम गोचाली संगे बनेकलग बनाएकलग भावनात्मक संबंध जोड़ेकलग अपन अपन दानी बानी मेल खाना संगठन के संगे चीन जान हुई लग जो यही कार्यक्रम अपने उपकरण के लग हो वही जानकारी करना चाहूँ अपने उपकरण के संगे हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब करीब 11 बजे सम्म अपने उपकरण के संगे हुई नगर थी वाज है संग संगे बाटी ऑनलाइन में जो www.tkapurfm.org tkapurfm एप्स मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत है अपने उपकरण के संगे हमरे बाटी ओ अपने होके हमार संगे लाइन खुला बावे ओ जाके वह ठाव से थे अपन सहभागी थे अपने होके जान जनाई सकती देह सकती का अपने होके मैं जानकारी करना चाहन जो रेडियो प्रेमी बाटी संघरे प्रेमी आटी संघरे के खोजी में बाटी रेडियो मार्फत संघरे के खोजी में रहल संघरे होके लौरे लौंडी चाहे कोई संघरे होके थे अपने होकर आई सेक थी का ना अपने होकर मैं कर जानकारी करना चाहा मनोत्तर पर्व के ढेर शुभकामना देना चाहा मनोत्तर पर्व के अपने होकर तम तैयारी में जो लागल हुई रोटी पकैती हुई भी या अनोत्तर जौन ठाव में बनैना जौन ठाव में भंगना जौन ठाव में पूजा करना ठाव के तैयारी सर सफाई और सामग्री के फे अपने जो होकर भी का ना हम लाठ लाइन खुला बाई सुनिए 91.5 161.5 के नगर खुला बाई अठे पर हम फिर से गीत जोड़ी गीत के पास है फिर से हुई बाटी लाइन खुला बाई

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो, कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम
0: था, कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: लो इतने छिटो आमा बनने लागो तो पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी, 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: आरती ब्यूटी एण्ड कस्मेटिक मा सौन्दर्य र श्रृंगारको लागि विभिन्न ब्रान्डका कस्मेटिक सामग्री पाइनुका साथै थारू गरगहना पाइन्छ र ब्यूटी पार्लरको सुविधा समेत रहेको जानकारी गराइन्छ।
6: सञ्चालक आरती चौधरी, सम्पर्क नम्बर 98624470483।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: अरेला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चपकी, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काँटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
3: अरेला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर, एलएन मेडिकल अगाडि, संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।
4: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जै भो? पाछा से सुरु करल मने घर सिर्जा सेक्ल।
5: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
4: मिस्तरान बर्जना उक न घर हेरो न, अट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न, ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो न, कबू कहूँ घुम जाए था पाए।
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: खाने मन तो कहा तर के जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फिर खान पर्छ
4: तत तो एक्लो कहाँ छस रे यार त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नु पर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
3: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
4: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कस्तो पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
3: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसके जस्तो यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस कटरस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: टीकापुर नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समिति को संभावित भारी वर्षा र बाढ़ी सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना। आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार आउँदो असोज 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत यस क्षेत्रमा बढी अथवा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। टीकापुर नगरपालिका कर्णाली नदी र स्थानीय नदी कुलाहरूको तटीय क्षेत्रमा अवस्थित भएकाले अत्यधिक वर्षाका कारण आकस्मिक बाढ़ी, डुबान र कटानको उच्च जोखिम देखिएको छ। तसर्थ धनजनको क्षति हुन नदिन सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा विपद व्यवस्थापन समिति हार्दिक अपील गर्दै निम्न बमोजिम सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्दछौ। मुख्य सावधानी तथा पूर्व तयारीका उपायहरू, नदी किनारमा नजाऊ, बाढ़ीको समयमा माछा मार्न, काठ दाउरा संकलन गर्न वा पौडी खेल्न कर्णाली नदी र स्थानीय खोला खहरेहरूमा नजाऊ, महत्वपूर्ण कागज तथा सामान सुरक्षित राखौ, आफ्नो नागरिकता, जग्गाधनी पूर्जा, शैक्षिक प्रमाण पत्र, औषधि र नगद गहना जस्ता बहुमूल्य सामानहरू वाटर प्रुफ झोलामा राखेर घरको सुरक्षित वा अग्लो स्थानमा राखौ, बाली नाली भित्राउन हतार नगरौ, धान भित्राउने मौसम भए तापनि मौसमको यकिन नगरी कृषि कार्य नगर्नुहोला, काटेको धान भए तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सारौ, होचो स्थानमा व्यवसाय भएका व्यवसायीले सुरक्षित स्थानमा सामानको व्यवस्थापन गरौ, विशेष वर्गको ख्याल राखौ, बाढ़ी वा डुबानको जोखिम बढेमा घरका वृद्ध वृद्धा, बाल बालिका, गर्भवती महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थान वा सामुदायिक आश्रय स्थलमा लैजाने तयारी गरौं, आवश्यक जानकारी तथा सहयोगका लागि वडा अध्यक्ष, नगर प्रहरी, विपद सम्पर्क व्यक्ति तथा सुरक्षा निकाय र सरकारवालासँग समन्वय गरौं। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
4: कामदार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।
5: काठमाडौँ स्थित घरेलु कामदारका लागि एकजना पुरुष र एकजना महिला तथा सिन्धुपाल्चोकका लागि एकजना कामदार तत्काल आवश्यक परेको हुँदा इच्छुक तथा योग्य व्यक्तिहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
4: कार्यस्थल काठमाडौँ तथा सिन्धुपाल्चोक, आवश्यक संख्या पुरुष एकजना, महिला एकजना तथा अन्य एकजना, सम्पर्क फोन नम्बर 98541000725। इच्छुक व्यक्तिहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।

0: सूचना सूचना सूचना जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बंगालको खाडीको पूर्वी भाग तथा उत्तर अण्डमान सागर आसपास विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण असोज 8 गते बिहिबारदेखि 12 गते सोमबारसम्म सुदूरपश्चिम तथा मध्य नेपालका विभिन्न स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। सम्भावित बाढ़ी डुबान तथा अन्य विपदबाट सुरक्षित रहन
1: टिकापुर नगरपालिका
0: सम्पूर्ण नगरवासीमा विशेष सतर्कता अपनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। नदी खोला नहर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्र नजिक नजानुहोस्। बालबालिकालाई यस्ता स्थानमा खेल्न वा जान नदिनुहोस्। गर्भवती सुत्केरी बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुहोस् र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्न सहयोग गर्नुहोस्। नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लाल पूर्जा नगद औषधि मोबाइल रेडियो टर्च लाइट लगायत आवश्यक सामग्री सुरक्षित झोलामा तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। बाढ़ी तथा मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क टोल फ्री नम्बर 1155 सम्पर्क गर्नुहोस् तथा आधिकारिक सूचना स्रोतको नियमित जानकारी लिनुहोस्। जोखिम बढेमा स्थानीय तहको निर्देशन पालना गर्दै सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्। आवश्यक परेमा एम्बुलेन्स लगायतका सेवा
1: टिकापुर नगरपालिकाबाट
0: निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। अनुरोधक संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को आर्थिक सहयोग तथा सप्रोस नेपालको सहजीकरणमा
1: टिकापुर नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: अरेल्ला सुन चाँदी पसलमा छड्की तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चपकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काँटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
3: अरेल्ला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर LN मेडिकल अगाडि सञ्चालक खुमरा सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।
4: अत्यन्त जरुरी सूचना। मिति 2083 साल असोज 9 गते से 11 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्रमा न बाढीकै जोखिम रहला कुइलक वर्षे सबको गाउँपालिका वासीको न हार्दिक अर्जी गरती आपन खाद्यान्न सामग्री महत्वपूर्ण कागजात नगद तथा जिन्सी सामान लत्ता कपडा दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान सुरक्षित ठाउँमा न धर्बी। घर व आन्दर पान्दर के अवस्था जोखिमपूर्ण हुइसेकना हुइलक वर्षे आवश्यक सतर्कता अपनाकन सुरक्षित ठाउँमा न बैठक लागि अनुरोध गरती। सम्भावित बाढ़ी के जोखिम हन मध्यनजर करती समयमा सुरक्षित रही सतर्क रही ओ एक और जान हन सहयोग करी। जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय दुर्गौली कैलाली।

0: संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो।
1: विगत 35 वर्षदेखिको सुमधुर साथ यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेट, कार्पेटको शहनशाह।
2: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना हुने न पट्टा निपैना त
3: अधि गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटा स्तरा तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कान लबाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहू सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864141208 ओ 9846439261।
4: हार्दिक सुनचानी पसलमा छत्के तिलहरी माइली तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चापकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका घर गहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
5: हार्दिक सुनचान्दी पसल सरकारी अस्पतालको भित्री रोड सञ्चालक शंकर साहू सम्पर्क नम्बर 9848420।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपन कन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपना उकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गांवपालिका में स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण संबंधी छलफल। वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस के 7वां वार्षिक कैंपस सभा शुरू, सभा लौ नेतृत्व चयन करना। आज देशभर वर्षा हुई, टिकुस ठाउँ में भारी वर्षा के संभावना रहलक, उर्से सतर्क रह नागरिक, मौसमविद के आग्रह। वर्षा के कारण पहिरो खसबे देश के मुख्य राजमार्ग अवरोध, यातायात सेवा प्रभावित। एशियाली खेलकूद के क्रिकेट में नेपाल से अफगानिस्तान 5 विकेटले पराजित। जानकी गांवपालिका में स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण संबंधी छलफल हुईबा। प्रैक्टिकल एक्शन नेपाल भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप के सहकार्य में जानकी गांवपालिका के स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण शुरू हुई लखो। कार्यशाला गोष्ठी में नेपाल रेडक्रस सोसायटी कैलाली के सभापति लोकराज जोशी विपक्ष हुई सकना क्षति कम करक लगी बहुप्रकोप के विश्लेषण कर काम कर आवश्यक रहलक बटविलाट। वहां विपद जोखिम वित्तीयकरण व जोखिम हस्तांतरण कर आवश्यक रहलक बटवेटी। विपद में राहत देख कलहक समाधान नि हुईना हुईलक वर्षे जोखिम हस्तांतरण करना काम कैकन करना कैकन काम कर आवश्यक रहलक बटुलाट। विपद व्यवस्थापन के लागि 8ठो प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र हुकनमा काम करल मन जोखिम घटाई सेकजिना बटुटी। स्थानीय सरकार विपद के बेला निजी क्षेत्र समुदाय व नागरिक संचार दार्ती निकाय प्रादेशिक सरकार संघीय सरकार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति अत्यावश्यक सेवा व विज्ञ लगायत के सहयोग लिह पर्ना उहाँ बटुलाट। जानकी गांवपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी कौन संरचना कौन ठाव कसिक बनैना व बजेट फेकौन शाखामा कतरा धर्ना कना बाट महत्वपूर्ण हुईलक बटुलाट। वहाँ पालिकामा विपद सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजना बनैना तयारी हुईलक बटुलाट। अध्यक्ष चौधरी ओडा पालिका से करलक काम संस्थागत कर आवश्यक रहलक बटुटी। पालिकामा विपद सम्बन्धी के काम संस्थागत करना तयारी हुईलपा छ, कालके दिनमा न ऊह अनुसार काम कना बटुलाट। जानकी गांवपालिका के वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्र प्रसाद जैसी अब भारी वर्षा हुईना सूचना हुईलपा छ के सूचना अनुसार जानकी गांवपालिका विपद जोखिम हन न्यूनीकरण करना उद्देश्य लेखन बाढ़ी पूर्व तैयारी संबंधी के जानकारी समुदाय में रहलक विपद व्यवस्थापन समिति बाल संजाल युवा संजाल से बैठक छलफल जारी ढलक बटुलाट। वहां पूर्व तैयारी के लागि सूचना बजैना एसएमएस करना फेसबुक पेज मन सूचना डरना के संग सेफ सेन्टर मन सरसफाई करना गांव में सूचना करना लगायत के काम करती रलक जानकारी करैलबाट। वहां सूचना व्यवस्था निकैक पूर्व तैयारी में बैठक धान बाली निकाल्ना अनुरोध करना के संग बारी ऐलक समय में बाल बालिका व ज्येष्ठ नागरिक बड़ी जोखिम में पर्ना हुईलक उसे सुरक्षित ठाव में ढरक लगी तैयारी कर फे आग्रह कलबाट। वीरेन्द्र विद्या मंदिर सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत संचालित वीरेन्द्र विद्या मंदिर कैंपस के 7वां वार्षिक सभा हुईलबा। कैंपस व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह बम की अध्यक्षता में हुईलक कैंपस सभा मन राष्ट्रीय सभा के सदस्य नारायण दत्त मिश्र प्रमुख अतिथि रह। कार्यक्रम में बोल्टी राष्ट्रीय सभा सदस्य मिश्र टीकापुर के पहचान वीरेन्द्र विद्यालय ओ कैंपस रहलक बटुटी। शैक्षिक क्षेत्र आग बढ़ाई निषेगीलक बटुलाट। कैंपस अपनह अलग पाठ्य पुस्तक बनाई सेकना हुईलक उसे उही में ध्यान दिहेपना बटुलाट। संघीय व्यवस्था पाछ शैक्षिक संस्था खोलना मन ध्यान देलक तर गुणस्तर बढ़ैना बाट मन ध्यान निदेलक उहर्से शैक्षिक गुणस्तर में ध्यान दिहेपना वहां बटुलाट। टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगारजी अध्ययन तथा रोजगारी के लागि विदेश जैना लड़का पर्कन के लड़को बहर्ती गैलक अवस्था मन विदेश में पैलक दुख बारे फे स्वाचा आवश्यक रहलक बटुइलाबाट क्याम्पसके विकासके लागि अप्न कुछुक कर्ना योजना बनैला सेफे विविध कारणले नगरसभामा सहभागी हुइनि स्याकबेर क्याम्पस असहयोग गर निसेकलक बटुइति अब बजेट अख्तियारी देना सम्बन्धमा कानूनमा टेक्कन पालिका निकास देना बातमा अप्न जिम्मेवारी रहलक बटुइलाबाट कार्यक्रममा टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसके पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर जगत बहादुर सिंह रावल यहाँ अध्ययन गर्ना विद्यार्थी सरकारी सेवामा जागिर खाई विभिन्न अवसर मिल्लक बटुइलाबाट उहाँ मनै समाज मन गाउँ मन देश मन सम्मान हुएकन चाहना हुइलक उहाँसे सम्पत्ति होक कलक खुशी नि हुई सेक्ना स्वदेश मन मान प्रतिष्ठा रहलक बटुइलाबाट क्याम्पसके पूर्व अध्यक्ष फकीर सिंह कडायत क्याम्पस शुरू करबेर भवनके अभावके बावजुद फेर शुरू कर गिलक बटुइटी विभिन्न पहल से पुरान दुईठो भवनके छतमन छानो डर्ती पठन पाठन निरन्तर देलक स्मरण करलबाट क्याम्पसके पूर्व अध्यक्ष नवराज रावल क्याम्पस आग बढ़ाई करगिलक चिन्तन महत्वपूर्ण रहलक बटुइटी संस्था आग बढ़ाई सकुनके सहकार्य हुइलवन सम्भव हुइना व टीकापुरके विकासके बारे बहस करा आवश्यक रहलक बटुइलाबाट पूर्व अध्यक्ष ललित थापा 25 जना विद्यार्थी से शुरू हुइलक क्याम्पसमा 2500 विद्यार्थी पुग्ना गौरवके विषय हुइलक बटुइटी पाछक समय विद्यार्थी घटलक मन चिन्ता व्यक्त करलबाट कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीके नगर सभापति रविन्द्र विष्ट नेकपा एमालेके नगर अध्यक्ष लक्ष्मण थापा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीके हरिराम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीके विष्णु बम शाह प्राध्यापक संघके सभापति थिर प्रसाद उपाध्याय अभिभावक महेश बुढा आरएमई स्कूलके प्रिन्सिपल तेजराज खनाल कार्यवाहक सभी सभापति राजेन्द्र महरा लगायत शुभकामना व्यक्त गर्दछ सदस्य वीरेन्द्र साहुसे संचालन करल हुइल कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष दयाराम सञ्जयाल गर्दछ कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख हर्क बहादुर भण्डारी क्याम्पसके प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दछ क्याम्पस सभामा उहाँ आर्थिक वर्ष 2082-83 के 3,31,61,660 रूपियाँ बराबरके आय व्यय प्रस्तुत गर्नबाट वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस वीरेन्द्र विद्या मन्दिर सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत 2063 साल भदौ 9 गते क्याम्पसके रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसे सम्बन्धन प्राप्त कैक सञ्चालनमा अहिलेक हो हाल क्याम्पसमा 1,296 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहलबाट क्याम्पस प्रमुख क्याम्पस क्यूएए प्राप्त करकन गुणस्तर अभिवृद्धि प्रक्रियामा आग बढ़ती रहलक बटुइटी उच्च शिक्षा के उत्तीर्ण दर 29% के लगभग रहलक 71% विद्यार्थियों र अध्ययन पूरा कर निसेकलक पीड़ादायी अवस्था रहलक बटुइलाबाट क्याम्पसमा हाल नियमित आंशिक कैखन 28 जना प्राध्यापक हुकनके संग 8 जना कर्मचारी कैक 36 जना जनशक्ति कार्यरतबाट क्याम्पस सय 18 कठा जमीनमा 32 कोठा सहितके 3 तले भवन निर्मित अवस्थामा बा क्याम्पस सभा व्यवस्थापन समितिके लौव नेतृत्व चयन करुया बा खोज खबरमा एक घड़ी विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्ति रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 9844 27 359 र 9848 42 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
2: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एकछेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस् या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौ र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
5: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: सुन्नुहोस् न, यसपालि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु। सिर्चाना सुनचाली पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
7: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
6: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
7: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
6: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
7: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
8: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
7: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 9805943893।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। हार्द देशभर मनसुनी वायुकेसँग पश्चिमी वायु फे आंशिक प्रभाव रहल बा। संघ बलियो न्यूनचापीय प्रणाली भारतके उत्तर, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ प्रवेश आसपासमा न रहल बा। ईसे करबेर आब देशके अधिकांश ठाउँमा न बद्री लागल बा। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेशमा धूर ठाउँमा न ओ कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेशके कुछ ठाउँमा हल्का थेसे मध्यम वर्षा हुइतिरहल बा। आज दिनभर अधिकांश बद्री लागल बा। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेशके हिमाली भूभागके अधिकांश ठाउँ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशके हिमाली भूभागके धेर ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा हिमपातके सम्भावना बा। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशके पहाड़ी व तराई भूभाग, कर्णाली प्रदेशके पहाड़ी भूभागके अधिकांश ठाउँमा सँग मधेस प्रदेशके कुछ ठाउँ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशके पहाड़ी व तराई भूभागके धेर ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाके सम्भावना रहल बा। कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेशके डान्चे ठाउँमा भारी थेसे धीर भारी वर्षाके सम्भावना बा। लुम्बिनी व कर्णाली प्रदेशके एक दुई ठाउँमा अति भारी वर्षाके सम्भावना बा। मधेस प्रदेशके एक दुई ठाउँमा भारी वर्षाके सम्भावना रहल बा। मधेस प्रदेश तथा कोशी, बागमती, गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेशके तराई भूभागके कुछ ठाउँमा हावाहुरी समेतके सम्भावना रहला। कुँहरसे सतर्कता अप्नाए मौसमविद नागरिक कुकन आग्रह कलबाट। लगातार के वर्षा के कारण हुईसेकना बाढ़ी तथा पहिरो के उच्च जोखिम ध्यान में न धरती राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण देश भर के 26 जिला के मुख्य सड़क तथा राजमार्ग में यातायात आगमन बंद करलक जनैलबा। गृह मंत्रालय अंतर्गत के प्राधिकरण 2083 असोज 9 गते सार्वजनिक कलक सूचना अनुसार संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय हुकनसे प्राप्त विवरण के आधार में जोखिम युक्त मुख्य सड़क बंद करना व रात्रिकालीन आगमन रोक्ना निर्णय करलक बटवागिल बा। कोशी प्रदेश के ताप्लेजुंग, संखुआ सभा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेरठुम, पाँचथर, इलाम, सुनसरी व उदयपुर, बागमती प्रदेशके दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे प्लाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, ललितपुर व चितवन जिल्ला मन यातायात बन्द गर्न निर्णय कर्गिलबा। वस्तक गण्डकी प्रदेशमा लमजुम व म्याग्दी, लुम्बिनी प्रदेशमा रोल्पा, दाङ, रूकुम, पूर्व कर्णाली प्रदेशमा रूकुम पश्चिम व सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बझाङ, बैतडी जिल्लामा फे यातायात बन्द कर्गिलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश व कर्णाली प्रदेशमा लम्बादुरी के सवारी साधन बन्द कर्गिलबा। ऊ प्रदेशमा भारी थेसे अति भारी वर्षाके पूर्वानुमान पाछ लम्बादुरी के सवारी साधनमा रोक लगा जिल्ला गिलक प्रशासन से जनागिल्वा मौसमविद हुक र भारी वर्षा के प्रक्षेपण करलसँग संभावित दुर्घटना वा जनधन के क्षति न्यूनीकरण के लागि अत्यावश्यक काम बाहेक यात्रा नै गर जोखिमयुक्त सड़क खण्ड मन रातके समयमा सवारी साधन निचलाई गृह मन्त्रालय सकुहर मन अनुरोध समेत गर्लबा सँग कौनोफे आपतकालीन अवस्था वा उद्धारके लागि विपद हटलाइन 1234 नेपाली प्रहरी सही सशस्त्र प्रहरी बल 1114 ओ मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि 1155 सम्पर्क गर आग्रह कैगिल्बा। काली थेसे देशके विभिन्न ठाउँमा हुइतिरलक वर्षाके कारण देशके मुख्य राजमार्ग हुक्र अवरोध हुई लागल बा। वर्षाके कारण पहिरो जाइ लागल पाछ राजमार्ग अवरोध हुइतिरहल बा। अविरल वर्षा पार्छ पृथ्वी राजमार्ग ओ नारायणगढ़ मुगलिङ सड़क बन्द हुइल बा। कृष्ण भीर मन फे पहिरो गइलबा। कलसे तरसे लगा गिलक वाल समेत खस लगलक बटवा गिलबा। पहिरो खसबेर कान्ति लोकपथ अवरोध हुइल पाछ उहाँके यातायात सेवा प्रभावित फे हुइलबा। पहिरो खस्क ओ लडेक जल सतह बढ़ल पाछ काली गण्डकी करिडोर फे अवरोध हुइलक। स्थानीय प्रशासन से जानकारी देगिल्बा। बीपी राजमार्ग अवरोध हुइल पाछ काठमाडौँ से धुलीखेल हुइती पूर्वतर्फ जैना सवारी साधन न धुलीखेल मन होल्डर करगिलक काभ्रेके जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रविन कार्की जानकारी देलाबाट नागढुंगा होकन उपत्यका बाहेर ऐना गाड़ी फे नागढुंगा होल्डर करगिलक जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ जानकारी देलाबा। याकरसँग वर्षाके कारण हवाई यातायात फे कुछ स्थान मन अवरोध हुइलबा। मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्क घाइते हुइल कैलालीके टीकापुरके सुरेन्द्र शाहके मृत्यु हुइलबा। काली संजय टीकापुरमा हुइलक मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्क गम्भीर घाइते हुइलक 55 वर्षीय शाहके आज बिहान नेपालगंजमा उपचारके क्रममा मृत्यु हुइलक। प्रहरी से जनागिल्बा संध्या 7:15 बजे हो टीकापुर स्थित सशस्त्र प्रहरीके ब्यारेका घ शाह चलैलक मोटरसाइकल पाछसे ऐलक औरो मोटरसाइकल ठक्कर दिहल पाछ शाह गम्भीर घाइते हुइल रह। टीकापुर अस्पतालमा उपचार पाछ काली संध्या नै शाह नेपालगंज रिफर करगिल रह। और मोटरसाइकल चालक जानकी गाउँपालिका दुई परागीपुरके 18 वर्षीय सीएच चौधरी फे घाइते हुइलबाट। घाइते चौधरीके अवस्था मध्यम रहलको उहाँके नेपालगंजमा उपचार हुइतिरलक। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरके प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाङ्गी जानकारी देलाबाट शाह चलैलक C4P5459 नम्बरके मोटरसाइकल हन सोही दिशा उहर जै तिरलक SUP P01009P2137 नम्बरके मोटरसाइकल ठक्कर देलक प्रहरी नायब उपरीक्षक डाङ्गी बटुलेबाट। खोज खबरमा फेरफे विश्राम विश्राम बा छैन निबाटी सुन्ति रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: सूचना जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बंगालको खाडीको पूर्वी भाग तथा उत्तर अण्डमान सागर आसपास विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण असोज 8 गते बिहिबारदेखि 12 गते सोमबारसम्म सुदूरपश्चिम तथा मध्य नेपालका विभिन्न स्थानमा धेरै भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। सम्भावित बाढ़ी डुबान तथा अन्य विपदबाट सुरक्षित रहन
10: टीकापुर नगरपालिका
9: सम्पूर्ण नगरवासीमा विशेष सतर्कता अपनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ। नदी खोला नहर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्र नजिक नजानुहोस्। बालबालिकालाई यस्ता स्थानमा खेल्न वा जान नदिनुहोस्। गर्भवती सुत्केरी बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुहोस् र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा सार्न सहयोग गर्नुहोस्। नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र लाल पूर्जा नगद औषधि मोबाइल रेडियो टर्च लाइट लगायत आवश्यक सामग्री सुरक्षित झोलामा तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्। बाढ़ी तथा मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क टोल फ्री नम्बर 1155 सम्पर्क गर्नुहोस् तथा आधिकारिक सूचना स्रोतको नियमित जानकारी लिनुहोस्। जोखिम बढेमा स्थानीय तहको निर्देशन पालना गर्दै सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्। आवश्यक परेमा एम्बुलेन्स लगायतका सेवा
10: टीकापुर नगरपालिकाबाट
9: निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। सतर्क रहौ, सुरक्षित रहौ। अनुरोधक संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को आर्थिक सहयोग तथा सप्रोस नेपालको सहजीकरणमा
10: टिकापुर नगरपालिका द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
8: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल?
11: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिल्बो नि करत का कैन हो का
8: मिस्तरान बर्जनाउकन घर हेरो न, कटरा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्त बनी हो न, ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
5: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेष हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
11: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
12: नेपालगंज मेडिकल कलेज मा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरो साइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
13: यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार का दिन
14: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
12: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन लगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
14: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
13: डाक्टर आउने दिन यही असोज 17 गते तेस्रो शनिबार।
15: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कैलालीमा कुकुरकी शिकार कटी बिक्री वितरण कलक आरोपमा एकजना 65 वर्षीय मनै पक्राउ परलबाट गोदावरी नगरपालिका दुईके सुरेश नेपाली खानाकी लागि बिक्री कर्क काटक ढर्गीलक शिकार कुकुरके हुइलक सूचना आइल पाछा प्रहरी नियन्त्रणमा लेलक हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीके अनुसार कुकुरके शिकार बिक्री वितरण हुइटिरलक सूचना पाइल पाछा प्रहरी टोली नेपाली हन नियन्त्रणमा लेगिल रह। यद्यपि पकड़गिलक शिकार कुकुरके हो या अन्य कौनो जनावरके हो कना पुष्टि हो स्याकल्नी हो। प्रहरी शिकारके नमूना प्रयोगशालामा परीक्षण कार्य लागि पठाइना तयारी गर्लबा। प्रयोगशाला परीक्षण पाछा कलक शिकार वास्तविक स्रोत खुल्ना प्रहरी से जनाइगिल्बा। पक्राउ पर्लक नेपाली इलाका प्रहरी कार्यालय माला खेतीके नियन्त्रणमा धैगिल्बा। घटनाबारे थप अनुसन्धान भितिरलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली से जनाइगिल्बा। कैलालीकै भजनी नगरपालिका साथ करुवा घाटसे बिहिबार इलाका प्रहरी कार्यालय पृथ्वीपुरसे खटगिलक प्रहरी टोली बिहारीसे अवस्थामा ढर्गिलक करिब 1,30,000 रूपियाँ बराबरके फुटबल जुत्ता फेला पार्लक हो। भारतसे भन्सार छलिकै कन्नलक कु सामान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रहरी नियन्त्रणमा लेलक जनैलबा। वस्त कञ्चनपुरके विभिन्न ठाउँसे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर तथा माताहतके कार्यालयसे खटगिलक प्रहरीके टोली करिब 1,76,800 रूपियाँ बराबरके सामान पक्रलक हो। जिल्ला प्रहरीके अनुसार पकड़गिलक सामान मन पेय पदार्थ, चिनी, बिडी, सुरोट, नमकिन, चकलेट, पट लगायत के वस्तु रहल बा। ऊ सामान फे व्यवहारी से अवस्थामा फेला पारगिल रह। बरामद करगिलक सक्कु सामान आवश्यक प्रक्रिया पूरा करक नियन्त्रणमा लेलक प्रहरी से जनागिल बा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघके दस्तावेज मन सुन्दर वाक्य मन कलहक सिमेट हुई नै हिना बटुलाबाट आज संयुक्त राष्ट्र संघके 21 सभामन सम्बोधन गर्दै हुँदै उहाँ जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघके दस्तावेजमा सुन्दर वाक्यमा कल सिमेट हुई नै हिना उल्लेख गर्दै हाम्रो देशके मनिन हन बारम्बार विगतके पुननिर्माणमा संलग्न कराइलक संघ आफ्नो भविष्य बनिन अवसर दिएपनामा जोड़ दिएबाट प्रधानमन्त्री शाह कल हिन्दुकुश हिमालय करिब 2 अर्ब मनिनके घर हो। यी पर्वत ठुकनके नेपाल से फे धीर दूरसम्म रहलक जनसंख्या पानी पारिस्थितिक प्रणाली कृषि ओ जीविको पार्जन प्रदान करत हिमालय पृथ्वीके छेउमा रहलक भूभाग कलक नही यी पृथ्वीके जीवन सहयोग प्रणालीके महत्वपूर्ण हिस्सा फे हो। जापानमा जारी 20 एसियाली खेलकुदके पुरूष क्रिकेटमा नेपाल अफगानिस्तान हन 5 विकेट लेखन पराजित कलबा आइची मन रहलक कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमा आज हुइलक आफन पहिल खेलमा नेपाल अफगानिस्तान 5 विकेट लेखन हेराइल। नेपालके सन्दीप जोरा 34 रोहित पौडेल नट आउट 33 रन बनैल। अफगानिस्तानके फरिदुन डाउडज अब्दुल्ला अहमद जाई ओ अरब गुल 1-1 विकेट लेल। ईस्याघ टस जितक ब्याटिङ कल अफगानिस्तान 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाकन 102 रन बनाएल। अफगानिस्तान के फैसला खाई अहमदैस ओ नजीबुलहाल आज जादान समान 30 रन बनैल। नेपाल के कुशल भुर्तेल 4 ओ ललित राजवंशी 3 विकेट लेल। प्रतियोगितामा अफगानिस्तानी के यी दोस्रो खेल हो। अफगानिस्तान काली पहिल खेलमा जापान 48 रन लेख हेराइल रह। यो समाचार के संग खोज खबर ओराइल अन्तिममा जति जति खबर के मुख्य शीर्षक फेर्से। जानकी गाउँपालिकामा स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना निर्माण सम्बन्धी छलफल। वीरेन्द्र विद्या मन्दिर क्याम्पसके 7 वार्षिक साधारण सभा शुरू। सभा लौ नेतृत्व चयन कना आज देशभर वर्षा हुइती कुछ ठाउँमा भारी वर्षाके सम्भावना रहला पूर्णसे सतर्क रह नागरिकका मौसमविदके आग्रह। वर्षाके कारण पहिरो खसबे देशके मुख्य राजमार्ग अवरोध यातायात सेवा प्रभावित। ओ एसियाली खेलकूद के क्रिकेट में नेपाल से अफगानिस्तान 5 विकेट लेखन पराजित। लिताबकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा में खोज खबर सुन्न सिक्बी। आबक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती। मैं गीता फी बिदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
16: अत्यन्त जरुरी सूचना। मिति 2083 साल असोज 9 गते से 11 गते सम्म जानकी गाउँपालिका के क्षेत्रमा बाढीकै जोखिम रहल हुइलक वर्षे सबको गाउँपालिकावासी हार्दिक अर्जी गरती। आफन खाद्यान्न सामग्री महत्वपूर्ण कागजात नगद तथा जिन्सी सामान लत्ता कपड़ा दवाई लगायत के अत्यावश्यक सामान सुरक्षित ठाउँमा धर्बी। घर व आन्दर पान्दर के अवस्था जोखिमपूर्ण हुइसेकना हुइलक वर्षे आवश्यक सतर्कता अपनाकन सुरक्षित ठाउँमा बैठक लागि अनुरोध गरती। सम्भावित बाढ़ी के जोखिम हन मध्यनजर करती समयमा सुरक्षित रही सतर्क रही ओ एक और जहन हन सहयोग करी। जानकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका के कार्यालय दुर्गौली कैलाली। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुरको सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी सूचना। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूलाई यही असोज 10 गतेदेखि 25 गतेसम्म आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु पर्ने भएकाले सामुदायिक वनका सम्पूर्ण सदस्यहरूले असोज 25 गते भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अध्यक्ष कर्ण बहादुर बुढा। शीतल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह टीकापुर 2 राजीपुर कैलाली।
17: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: हार्दिक सुनचानी पसलमा छक्के तिलहरी, माइली तिलहरी, रानी हार, हार, मंगलसूत्र, चापकी, पेन्डल, बाला, औठी, चन्द्रमा, काटा, नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
2: हार्दिक सुनचान्दी पसल, सरकारी अस्पतालको भित्री रोड, सञ्चालक शंकर साहु, सम्पर्क नम्बर 98 48 42 91 74।
0: पैसा तथा पर्स भेटिएको सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 जमरा पारी मेन्थादेखि समितिपुर जाने बाटोमा मेरीगोल्ड स्कूलको बसमा विद्यार्थी पुर्याउन जाने क्रममा केही दिन अघि बेलुका 4 बजेतिर कालो पर्स, औषधि र केही पैसा भेटिएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले लोकबहादुर सारू मगरको मोबाइल नम्बर 97 44 28 72 वा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएममा सम्पर्क गरी बुझी लैजान हुन अनुरोध गरिन्छ। पैसा दावी गर्ने व्यक्तिले पर्समा रहेको जम्मा रकम भन्न सक्नु।
3: आई हो बड्डो, घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
4: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
3: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टफे पटानी हुइन कि गुङ्गुवा बुढो हो ना, कबु कहुँ र घुम जाए त पाए।
5: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार, पार्टिशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा फिर होस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733